जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

भगवान का घर है, हमारे सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ों। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां है सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है कई दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों आज रविवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0302-65-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0302-62-66-11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। सभी सुनने वालों को वेलकम स्वागत किया जा रहा है और यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारे सभी सुनने वालों और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर और अति सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अबीन। आज रविवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है गुरमीत और मीना की आवाज में, जरूर आप सुनते ही रहना। एल्बम का नाम है भक्ति ज्ञान, उसी एल्बम में से निकालकर ये सुंदर और अति सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

और सभी सुनने वालों की सेवा में प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में अब की बार ये सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं। चेतना शुक्ला की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए सुंदर और सुंदर भजन आज के प्रोग्राम में बस पीस की गए। कुमार विशु की आवाज में अभी आपने सुना, चले अब की बार विक्रम हसरा की आवाज में रेडियो SBS के जरिए ये सुंदर सा भजन पेश किया जा रहा है विक्रम हसरा की आवाज में।

प्रोग्राम में प्रस्तुत की गई है। रेडियो SBS के जरिए प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। चलिए प्रोग्राम में अगली बार आज रविवार की सुबह के प्रोग्राम में हरिओम शरण जी के आवास में ये सुंदर सा भजन पेश किया जा रहा है।

सुंदर भजन हरिओम शरण जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पीस की गए। चले प्रोग्राम में अनूप जलोत्रा जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

रेडियो SBS के जरिए अनूप जलोटा जी की आवाज में सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अब की बार ये सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है अनुराधा पोटवल जी की आवाज में।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं। आरती भजन जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ।

प्रोग्राम में 8 मिनट व्यतीत हो चुका है। सुनने वालों, रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज रविवार का दिन है, 19 तारीख जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। का यही मतलब होता है कि यहाँ से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जाएगा। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश करने से पहले आप सभी को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। और बहुत से सुनने वालों होते हैं जो इस प्रोग्राम को भी सुनते हैं गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। तो चले हम आपको

अपने प्रोग्राम में पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम का पहला गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई फिल्म का नाम था आरती। उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले फिल्म हम किसी से कम नहीं उसी फिल्म का एक गाना पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी और सुषमा सरस्ता की आवाज में।

फिल्म का नाम हम किसी से कम नहीं, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना, हर एक को खबर कीजिए रेडियो SBS के बारे में।

में खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार आशा भोसले एंड मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11 महेंद्र कपूर प्रोग्राम में।

रेडियो SBS के जरिए गाना बस पेश की गई महेंद्र कपूर के आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में किशोर एन लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: रेडियो SBS के जरिए वही गाने पेश किया जा रहा है जो आप सुनना चाहेंगे, जो आप पसंद करते हैं। मुकेश और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। एड फिल्म पत्थर के सनम, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और वो भी शहर यूट्रेख से। तो चले प्रोग्राम में अब की बार गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए, हम आपको ले चलते हैं एक और काफी खूबसूरत गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और वो भी लता मंगेशकर, लता जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में, एड फिल्म नाइट इन लंदन।
1: राइट द हिट्स, वेरी एफ हाउस, दिस इज रेडियो SBS।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम था नाइट इन लंदन। उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में आशा भोसले एन एट दे बर्बन यानी कि राहुल देव बर्बन की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। द नाइटिंगेल ऑफ एशिया आशा भोसले और एट दे बर्बन राहुल देव बर्बन की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है पिया तू अब तो आजा।

uit de film Pyaar Hai Pyaar, मोहम्मद रफी और आशिया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। उत्तरेख लाइटसराइन गिरधारी स्त्रात का रहने वाला राजन गिरधारी भी इस वक्त जागे हुए हैं, गार्डन में बैठे हुए हैं और हमारा प्रोग्राम को इस वक्त सुनते हैं। बस राजन गिरधारी आपको भी शुभकामनाएं पेश किया जा रहा है सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है और कहा कि हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। ऐप तो हजारों हजारों सुनने वालों बस करते हैं गुड मॉर्निंग के साथ, गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। कुछ सुनने वालों भी लिखे हैं कि हमारा प्रोग्राम को इस वक्त सुनते हैं। इस तरह से राजन गिरधारी, गीता रॉय और रशीद पीरू सभी को वेलकम। चले प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। आज की पुरानी फिल्म संगीतों का प्रोग्राम में ये गाना, रविवार का दिन है, सुबह की प्रोग्राम 19 तारीख जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। ठीक 12 बजे से सेविका नीता के जरिए प्रोग्राम पेश होगा।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। जिस तरह से मैंने आपको खबर किया कि ठीक 12 बजे से सेविका नीता की सर ये बस प्रोग्राम पेश किया जाएगी, उनकी प्रोग्राम एक खास प्रोग्राम पेश किया जाएगी तकरीबन 1 बजे से हिप्नोस के बारे में एक खास प्रोग्राम पेश होगा और साथ ही साथ एक इंटरव्यू भी होगा। जरूर आप प्रोग्राम सुनते ही रहना 12 बजे से सेविका नीता की सर ये बस प्रोग्राम पेश किया जाएगी और 1 बजे से खास स्पेशल प्रोग्राम हिप्नोस के बारे में और उसी के बारे में एक इंटरव्यू भी पेश होगा। जरूर और जरूर आप सुनते ही रहना। आपको भी खबर किया जा रहा है कि अभी 11 बजे से आप दरियाब कर सकते हैं सुपरमार्केट टोको दवाख के पास में, सुपरमार्केट टोको दवाख के पास आप दरियाब कर सकते हैं हर रविवार ये दुकान जो है जिसका खबर आप सालों से सुनते आए हैं सुपरमार्केट टोको दवाख का, वो दुकान अभी 11 बजे से लेकर के आज शाम में 6 बजे तक खुला रहेगा। और आपको भी खबर किया जा रहा है कि इस साल फोर्द ट्वेन फेयर तक सकेर मिलन समर फेस्टिवल होगा। अभी एक दो नखमे के बाद आपको और भी हम खबर करने वाले हैं मिलन समर फेस्टिवल के बारे में, जरूर आप सुनते ही रहना। उससे पहले कुछ और खूबसूरत नखमे तलत महमूद और लता जी की आवाज में, सुहागन फिल्म का गीत बस पेश किया जा रहा है तलत महमूद एंड लता।

लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरा उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना। फिल्म सुहागन का गीत जो पेश की गई आप सभी सुनने वालों को काफी पसंद आया है। स्वर्गीय हेमंत कुमार।

स्वर्गीय हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों आपको खबर किया जा रहा है शुक्रवार 28 तारीख अगस्त रक्षाबंधन का दिन है और जिस तरह से बीते हुए प्रोग्राम में हमने आपको खबर किया है कि ये मुस्कुराता दुकान जो है हॉलैंड देश के अंदर में सबसे बड़ा दुकान जहां पर इंडिया भारत देश का हर एक कपड़े दुल्हा दुल्हन के लिए हर एक कपड़े आपके लिए हर एक कपड़े बच्चों के लिए हर एक कपड़े आप जाकर खरीद सकते हैं गहने से लेकर के जूता हुआ या कोई भी सामान हुआ फीर बड़ा दुकान ये है। दुकान के अंदर में सामान बिल्कुल भरा हुआ है हर एक सामान यहाँ पर सस्ती दामों में आपको दिया जा रहा है मुस्कुराता दुकान के पास मुस्कुराता फैशन के पास। और स्पेशल आपको खबर कर रहे हैं कि शुक्रवार 28 तारीख अगस्त रक्षाबंधन का दिन भाई बहन या बहन भाई का प्यार का दिन है वैसे तो हमेशा होता है लेकिन उस दिन स्पेशल होता है रक्षाबंधन का दिन। तो आपको खबर कर रहे हैं मुस्कुराता दुकान की उनके पास हजारों हजारों खूबसूरत रक्षाबंधन अंदर आया है जो आपको आपको सिर्फ 1 यूरो में दे रहे हैं। यमा हीर कोमन एड सुकन आकर यहाँ पर खुद देखिए कौन सा रक्षाबंधन आप खरीदना चाहेंगे 1 यूरो में 1 यूरो में आपको दिया जा रहा है। मुस्कुराता दुकान के पास मंगलवार से लेकर के और रविवार तक यहाँ पर आप तस्री फरमा सकते हैं। ग्रैटिस पार्किंग है मोटरकार गाड़ी से आप आएंगे फ्री पार्किंग आपके लिए यहाँ पर होता है। तो जरूर मुस्कुराता दुकान के पास आप तस्री फरमाइए और यहाँ पर जो भी सामान आप जाकर खरीदेंगे और कहेंगे कि रेडियो SBS पर खबर आपने सुना है या तो हमने आपको भेजा है हाँ सिर्फ यही आपको कहना है कि रेडियो SBS रबीन आपको भेजा है तो सस्ती दामों में और भी ज्यादा कोटिंग कटौती में आपको सामान देंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो मैंने हमेशा आपसे कहा कि अगर ऐसा ना हुआ तो दुकान में से सीधे आप हमें तार कीजिए। मुस्कुराता तनहा शहर कारल रोस्त्रात नंबर 4 तनहा शहर के अंदर में होते हैं जहां पर इन दिनों हर एक आते हैं न सिर्फ देनहाग रोटरडम और आसपास की शहरों में लेकिन दूर दूर शहरों से हॉलैंड देश के कोने कोने से और खास तौर पर खबर मिला है कि हॉलैंड देश से बाहर बेल्जियम से भी लोग आते हैं डच्सलैंड से लोग आते हैं यहां पर सामान खरीदने के लिए। बाकी हर एक इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है muskurata.nl वेबसाइट पर आप जाइए उसी वेबसाइट पर सभी और सभी इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है। मोहम्मद रफी अनाशा विनोद खन्ना का एक खास फिल्म इस फिल्म का गाने बहुत कम पेश होते हैं रेडियो पर लेकिन हमेशा रेडियो SBS के जरिए पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम यू

एक खास फिल्म, फिल्म का नाम युवराज, मोहम्मद रफी और राशिया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। खूबसूरत पुरानी फिल्में गाने आप सभी के लिए पेश किया जा रहा है पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में। हमारी बहुत सी सुनने वालों इन दिनों रोटरडम डेनहाग यानी कि प्रोफेसी साइड हॉलैंड में हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं, सुतमेर में, ब्लाइसवेग में, वाडिंगस्वेन, खाउडा, डीएबी प्लस रेडियो के जरिए हमारा प्रोग्राम प्रोफेसी साइड हॉलैंड में भी सुनाई देता है। और इन दिनों ज्यादा सुनने वालों रोटरडम डेनहाग प्रोफेसी साइड हॉलैंड में हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं, सभी को वेलकम रेडियो SBS, आप सभी को हमेशा और हमेशा स्वागत कर रहे हैं। और इसी तरह से हर एक को बस खबर करते ही रहना रेडियो SBS के बारे में। अब ऐसे हॉलैंड देश के बीच में मिड नीदरलैंड में भी दूर दूर शहरों तक ये प्रोग्राम भी डीएबी प्लस रेडियो की जरिए अच्छी आवाज में, अच्छी साउंड में सुनाई देता है। साउंड के बातचीत हुआ तो हमेशा सुनने वालों ढेर सा कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, ये रेडियो SBS का साउंड काफी खूबसूरत साउंड होते हैं, सभी गाने जो है अच्छी क्वालिटी साउंड में बस सुनाई देता है, होना ही चाहिए, इसलिए कि हम सभी गाने YouTube द्वारा

शाह जी की आवाज में, आशा भोसले की आवाज में गाना आप सुनते ही रहना, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। 10:01 वेटेड हो चुका है, 8 मिनट ओवर 11:30।

ऐ चार दिन आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, खबर आप सुनते हैं कि आपके घर पर कोई भी खुशियां है, किसी को आप सरप्राइज करना चाहेंगे, आपकी पत्नी पति के जन्मदिन है उनको आप सरप्राइज करना चाहेंगे, फरमाइश देकर बेटी बेटा का विवाह है, शादी है या बेटी बेटा का मुंडन संस्कार है और आप फरमाइश देना चाहेंगे सस्ती दामों में, आपकी तमाम फरमाइश बस पेश किया जा रहा है। दो तीन रूप से सुनने वालों ये सवाल करते हैं कि हमने रेडियो पर सुना है कि फरमाइश का दाम 5 यूरो है, ये सही है? मैंने कहा बिल्कुल सही है, सालों से रेडियो SBS के पास फरमाइश का दाम 5 यूरो है। और इन दिनों हमारा प्रोग्राम प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में, मिडल नीदरलैंड में, दूर दूर शहरों तक DAB द्वारा सुनाई देता है, DAB प्लस रेडियो की जरिए, तब भी फरमाइश का दाम 5 यूरो रखा गया है। लोग हमेशा कहते हैं हमारा शहर में तो रेडियो जो होते हैं दाम रखे हुए हैं 15 यूरो, 3 यूरो, 5 तक। हाँ, सभी अपना अपना दाम रखते हैं, लेकिन रेडियो SBS का दाम सिर्फ 5 यूरो होता है। तो अगर आप फरमाइश देना चाहेंगे तो समय पर अपना फरमाइश दीजिए और आपकी फरमाइश 5 यूरो पर फरमाइश पेश किया जाएगी। 1 घंटा फरमाइश आप पेश करवाएंगे, किसी के लिए सरप्राइज देना है तो 1 घंटा फरमाइश आप देंगे तो तकरीबन 50 यूरो होगा। और साथ ही साथ खरातस में एक लिंक भेजा जाएगी फरमाइश के बाद, ताकि पूरा की पूरा फरमाइश आप घर पर डाउनलोड कर सके। सालों का तजुर्बा है, एनन फिर तैयार हो रहा है कि रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और सालों से सर्विस ही सर्विस दिया गया है सभी सुनने वालों को। तशरीफ फरमाइशें, कोई भी पार्टी आपने ऑर्गेनाइज किया है या तो अपना दुकान के बारे में कोई भी खबर आप देना चाहेंगे, अक्सी आपने रखा है और अक्सी के बारे में सुनने वालों तक खबर करना है तो आपकी तमाम रिक्लाम भी सस्ती दामों में बस पेश किया जा रहा है हम आपसे। दुकान के बारे में कोई भी खबर आप देना चाहेंगे, अक्सी आपने रखा है और अक्सी के बारे में सुनने वालों तक खबर करना है तो आपकी तमाम रिक्लाम भी सस्ती दामों में बस पेश किया जा रहा है हम आपसे। वादा करते हैं कि आपकी रिक्लाम

बिल्कुल सही है। मिलन शबर फेस्टिवल के बारे में अभी हम आपको खबर करने वाले हैं, तो जरूर खबर आप सुनते ही रहना। आपको भी हम खबर करना चाहेंगे, अभी ये 12 बजे से सेविका नीता के जरिए बस प्रोग्राम पेश किया जाएगी और तकरीबन 1 बजे से एक स्पेशल प्रोग्राम होगा, हिप्नोस के बारे में एक इंटरव्यू भी होगा, तो जरूर जरूर आप सुनते ही रहना। रोटरडम शहर की रहने वाली गीता रॉय एक खास गाना मांग किया है। रोटरडम शहर की रहने वाली अपनी प्यारी प्यारी सहेली बेयात्रिस गिबोट के लिए, तो चले मिलकर गाना सुनते हैं। आइडो फिल्म सोले, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है किशोर कुमार एन मन्ना दे की आवाज में। रोटरडम शहर की रहने वाली गीता रॉय की तरफ से रोटरडम शहर की रहने वाली अपनी प्यारी प्यारी सहेली बेयात्रिस जीबोध के लिए ये गाना पेश कर रहे हैं।

en Manna Day की आवाज में फिल्म शोले, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई और खासतौर पर रोटरडम शहर की रहने वाली गीता रॉय की तरफ से अपने प्यारी प्यारी सहेली रोटरडम शहर की रहने वाली बेयात्रिस जीबोध के लिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप दोनों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो वेस्ट भी इसका प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। मिलन समर फेस्टिवल फॉर द 42th ईयर, द एर्स्ट एंड द ग्रोथ्स मिलन समर फेस्टिवल 21, 22 en 23 augustus. Zuiderpark Den Haag, शहर के अंदर में होने वाले है जहां पर हर साल होते आए हैं। फॉर द 42th keer मिलन समर फेस्टिवल होगा 21, 22 en 23 augustus. 21, 22 और 23 तारीख अगस्त। और आप सभी को स्पेशल खबर किया जा रहा है कि इस साल फ्राइडे 21 अगस्त शुक्रवार 21 तारीख अगस्त लाइव फ्रॉम त्रिनिदाद फुल म्यूजिक ग्रुप के साथ, म्यूजिक ग्रुप दिले नादान के साथ आ रहा है लाइव ऑन स्टेज, लाइव पोडियम पर मशहूर गाने वाला Raymond Ramnarayan live on stage vrijdag 21 augustus Milan Summer Festival Zuiderpark Den Haag Shahargi Anderbe. De eerste, de grootste Milan Summer Festival. Milan jo hote hai Hollandies ki andar mein wo hai Milan Summer Festival. टिकट के लिए और ग्राम फरहूर के लिए जरूर आप जाइए मिलन समर फेस्टिवल .nl, उसी वेबसाइट पर सभी इंफॉर्मेशन।

स्टेटस पर भी आपको खबर किया जा रहा है मिलन समर फेस्टिवल के बारे में। तो अपना अजेंडा में नोट कीजिए, 21, 22 en 23 augustus. Milan Summer Festival hoene wale he Zuiderpark Den Haag mee.

रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों हमारा आज का प्रोग्राम यू ही तकरीबन 12 बजे तक आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी। इस तरह से मैंने आपको खबर किया 12 बजे से सेविका नीता की जरिए बस प्रोग्राम पेश किया जाएगी। उनके प्रोग्राम में एक स्पेशल प्रोग्राम होगा तकरीबन 1 बजे से हिप्नोस के बारे में आपको खबर किया जाएगी और उसके बारे में भी एक इंटरव्यू होगा। जरूर आप प्रोग्राम सुनते ही रहना। लता जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है ए मेरे

लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक आखिरी पुरानी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश होगा। मोहम्मद रफी की आवाज में एक गाना पेश किया जाएगी आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा है उम्मीद है गाना सुनकर और काफी पसंद करेंगे। कल सोमवार है और कल सुबह 9 बजे से फिर पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जरूर और जरूर आप फिर से सुनते ही रहना। इस गाना के बाद अब की बार आखिरी पुरानी फिल्म का गीत जो पेश होगा उस गाना के बाद प्रोग्राम में खबरें होगा और खबरें के बाद तुरंत हम आपसे फिर मिलेंगे।

रेडियो SBS के जरिए एक लव मैशअप आपकी सेवा में बस पेश की गए। आसरो उम्मीद है कि सुनकर और काफी पसंद किया।

प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मौसम आज का बदली बदली से है, समय समय पर धूप दिखाई देता है और समय समय पर बादल छाया हुआ मौसम। चले प्रोग्राम में अबकी बार ये गाना की ओर हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि सुपर मार्केट को दबा इस वक्त खुला है, कोई भी सामान खरीदना है तो अभी और इसी वक्त आप तशरीफ फरमाइए प्रिंस बैरनाथ प्लेन नंबर 45 तक यूट्रेक्ट सुइलन में। आज शाम 6 बजे तक दुकान खुला रहेगा। एक बड़ी ही खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग प्रोग्राम में।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में लाइव के जरिए प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का, और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। वैसे आप सभी सुनने वालों को खबर किया जा रहा है आज 1 बजे से लोकल गाने का खास प्रोग्राम नहीं रहेगा। अभी 12 बजे से सेविका नीता के जरिए प्रोग्राम पेश होगा और उनके प्रोग्राम में तकरीबन 1 बजे से एक खास प्रोग्राम होगा हिप्नोस के बारे में और इंटरव्यू भी होगा, तो जरूर प्रोग्राम सुनते ही रहना। चलिए गाना, एक चटनी गाना जो इन दिनों रिलीज किया गया है, मैंने सोचा चले आपको हम सुनाए गाना, कुछ नई म्यूजिक में नई आवाज में आपके लिए बस पेश किया जा रहा है, जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

बस रिलीज किया गया है, बिल्कुल नया संगीत, नया आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन और रेडियो वेस में इसका प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। शहर उत्तरेख टेम्स ड्राइव 237 से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। इसी तरह से ये बिल्कुल नया गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में एक और प्यार भरी रोमांटिक सॉन्ग, दिल में मोहब्बत है

एक बड़ी ही खूबसूरत प्यार भरी गाना रोमांटिक सॉन्ग बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है SBS संगीत भरी स्टेशन जहां पर हमेशा संगीत ज्यादा पेश होते हैं और बातें कम उन दिनों का एक खास गाना जो नई आवाज में नए संगीत में बस पेश किया जा रहा है।

रेडियो वेस में इसकी जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आसरो उम्मीद है सुनकर और काफी पसंद किया है रेडियो वेस्ट में इसकी जरिए, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना बस इन दिनों बिल्कुल नए रिलीज किया गया है, एक चटनी सॉन्ग होगा जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। ये गाना एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना बस इन दिनों बिल्कुल नए रिलीज किया गया है, एक चटनी सॉन्ग होगा जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। ये गाना भी नए आवाज

सुनो बोलो, 12 मिनट बाई हो चुका है प्रोग्राम में, सुबह साढ़े 11 बजे में रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता हमारा प्रोग्राम जो है खत्म समाप्त होने पर आ रहा है। अभी सेविका नीता घीसरिया बस प्रोग्राम सुनते ही रहना, उनके प्रोग्राम में हिप्नोस के बारे में तकरीबन 1 बजे से बस पेश किया जाएगी और उस प्रोग्राम में भी एक इंटरव्यू होगा, जरूर आप सुनते ही रहना।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। 10 मिनट बाकी है 12 बजे में, आखिरी गाना पेश किया जा रहा है और इसी गाना के साथ हमें इजाजत और आज्ञा दीजिए। अभी रिक्लाम न्यूज, मौसमी समाचार और फरकेर्स इंफॉर्मेशन के बाद सेविका नीता की सरिये प्रोग्राम सुनते ही रहना। एक बजे से स्पेशल प्रोग्राम हिप्नोस के बारे में बस पेश किया जाएगी, जिसमें इंटरव्यू भी लिया जाएगी। मैं आप सभी सुनने वालों से कल फिर मिलूंगा, कल सुबह 7 बजे। मत भूलना कि आज 3 बजे से बैठक गाना प्रोग्राम सुनने के लिए जो ग्लेन की जरिए पेश किया जाएगी।

दिल का रिश्ता तो किस्मत से बनते हैं, दिल का रिश्ता तो किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है। राम राम, नमस्कार और सलाम वालेकुम सुनने वालों, आप सुन रहे रेडियो SBS और मैं हूं आपका सेविका नीता।

सुना लो, आपको रिएक्शन देना है, कुछ कहना है या गीत मांगना है तो आप जरूर तार कीजिए। इस तार का नंबर है 03226666611।

सुन लो, आप सुन रहे हैं इतवार का प्रोग्राम, एक स्पेशल प्रोग्राम है। आप जरूर ही सुनते रहना। एक बजे आप सुनिए एक इंटरव्यू हिप्नोसिस के बारे में।

0: सुनो लो, हम आपको ले चलते हैं पहला नगमा की ओर। फिल्म का नाम है राजकुमार और आपको सुनाएगी द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी। शंकर जयकिशन के म्यूजिक पर आप सुनिए।
1: तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे।

0: तेरे जान जान।
1: तुमने किसी के जान को जाते हुए देखा है? द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफ़ी, फिल्म का नाम है राजकुमार, शंकर जयकिशन के म्यूजिक पर आपने सुना। इस बार नदीम खान के वास में, एल्बम का बोल है 15 सुपर सोल्स वॉल्यूम 5।

0: फिल्म चंबल की कसम से सुनने वालों आपने सुना द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर फिल्म क्रोधी
1: चल
0: हाँ चल
1: चल
2: चल
0: हाँ चल
1: चल
0: चल चमेली बाग में हम गाना गाएंगे।

0: चमेली बाग में हम मेवा खाएंगे। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर और सुरेश वाजकर के वास में। फिल्म का नाम है क्रोधी।
1: हे बेनी,
2: यप,
1: बली, हुप, गिब्स, हे,
2: गोपी,
1: यप,
3: पा पा पा पावल, बोल,
1: हाय भंस,
4: हाय,
1: लेट्स गो।

अभी तो हम हुए जवान और आप जोड़ा के वास में फिल्म बुलंदी। इस गीत के बाद सुनने वालों अब एक कमर्शियल ब्रेक सुनेंगे और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे आपसे इंटरव्यू लेकर। स्टूडियो में हाजिर है सस्किया।

0: गान।
1: अरे बोलो बोलो, कहीं सुना है, हम बताते हैं।
0: ओ शंकर जी ने राम जी को दुल्हन दई दी दान, मेहंदी

कहा सुनने वालों, आप सुन रहे हैं फिल्म के नाम है नसीब और आपको सुना रहे हैं डॉक्टर कमलेश अवस्थी और साथियों की आवाज में

हाँ सुनने वाले धीरे धीरे वक्त वक्त तो किसी का इंतजार नहीं करते। दो मिनट बाकी हैं 2 बजने में। आशा उम्मीद करती हूँ कि हमारा प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा। तार करने के लिए, रिएक्शन देने के लिए शुक्रिया। हमारा मुलाकात होगा बुधवार को, आप जरूर प्रोग्राम सुनते रहना 6 से 9 बजे तक। 6 से 9 बजे तक बुधवार को हमारा मुलाकात होगा। आप सुन रहे रेडियो SBS। मैं हूँ आपका सेविका अनीता। और हाँ, मुस्कुराते रहना।

0: जाने बल।
1: रोते हुए आते ही सब, हंसता हुआ जो जाएगा। किशोर कुमार के आवाज में योबरी नंबर हमारा हिस्सा के प्रोग्राम से। मैं हूँ आपका खिदमुसर ग्लेन, बस सुनते रहना हमारा हिस्सा के प्रोग्राम यहाँ से, ओवर योर फेवरेट बॉलीवुड रेडियो स्टेशन, द वन एंड ओनली ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS, और वो भी शरीर के अंदर से।

किशोर कुमार के वास में, बस सुनते रहना के दीवाना दीवाना लेके आया है दिल का तराना किशोर कुमार।

मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है। आई थी मुकेश साथ में, सुमन कल्याणपुर के आवाज में। अभी आप सुनते प्रोग्राम से

0: करना।
1: उदित नारायण साथ में अलका याग्निक के पास में सुनते रहना। इसी नंबर के बाद सुनते रहना प्रोग्राम से कुबेर शोज न्यूज फॉर के से फमासी और उसके बाद में बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ऑन रेडियो SBS।

inmiddels 6:03. 3:10 इस वक्त 6 मिनट गुजर रहा है। बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम सुनते रहना यहाँ से ओवर रेडियो SBS, और वो भी हर रविवार को शाम में 3 से 6 बजे तक सुनते रहना लाइव के जरिए बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम।

0: दिल का लगाना भारत सिंह के वास में भी आप सुनते प्रोग्राम से और आपकी बात सुनते रहे ना।
1: अरे कोई के काम के प्रॉब्लम तो कोई के घर के प्रॉब्लम।
0: श्याम सुंदर के वास में सुनते रहे ना।
1: कोई के भाई से प्रॉब्लम तो कोई के बहन से प्रॉब्लम।
2: भाई तू बताओ तोर प्रॉब्लम का है?
1: हमार प्रॉब्लम है मेरा रू के प्रॉब्लम, वंत उ प्रॉब्लम है सबके प्रॉब्लम, और जो सबके प्रॉब्लम है उमार प्रॉब्लम। अरे भैया मुड़ी हमारे भर गएगा देख के दुनिया के प्रॉब्लम। तू जाए कहाँ रानी भले चला जाए, तू जाए कहाँ रानी भले चला जाए
0: के तू जाए कहां रानी। श्याम सुंदर दिहा के आवाज में सुनते रहना।

0: यस्मीन के वास में भी आप सुन रहे थे हमारा कुलेखा नीता, नीता की पसंद भी आप सुन रहे थे प्रोग्राम से।
1: ऊंचे स्वर से बांसुरी बजाई जब घनश्याम ने, सारी आलम झुक पड़े उसके नजर के सामने।
2: तो क्या
1: मोरे बालापन के मितवारे सवारिया
0: रामदेव चैतु के पास में।

0: रामदेव चैतु के पास में भी आप सुनते प्रोग्राम से और अब की बार
1: सैया ले गई
0: अनंत भजन के पास में के सैया ले गए जिया अनंत भजन के

0: और तोरजोरी रविंद्र सिंह सिवनाथ के पास में भी आप सुनते रोटरडम, रोटरडम से सीला, सीला की पसंद भी आप सुनते
1: Voor alle informatie is Radio SBS 24 uur bereikbaar op telefoon 030 265 65 60.

रे पतली कमरिया ऐसी रघु सिंह के पास में अभी आप सुन रहे थे। यूट्रेक्ट से अच्छा है अच्छा कुमार नंदा का पसंद सुनते रहना प्रोग्राम से।

0: स्टीफन धर्मपाल के बाद में सुनते रहना
1: सूर्या रे
0: डेनहाग से हिस्ला यंकी की पसंद सुनते रहना प्रोग्राम से।

0: स्टीफन धर्मपाल के पास में अभी आप सुन रहे थे के थारे राधिका
1: बाजे ना बासुरिया रे
0: तैनाक के रहने वाले इसला यांकी की पसंद। अभी आप सुन रहे थे

रविंद्र भोला सिंह के पास में भी आप सुनते प्रोग्राम से आहिस्ता आहिस्ता आज की बैठक गाना प्रोग्राम समाप्त होने पर आते हैं। सनी मैन के पास में सुनते रहना के लो तेला खूब लो तेला भाऊजी।

सनी मैन के पास में अभी आप सुरते रामदेव चौ चैतु के पास में बस सुनते रहना आपकी बार।

Den Bosse, Nita, Mahabir, की पसंद तभी आप सुन रहे थे। एक स्पेशल रिक्वेस्ट सुन रहे ना, वो भी देना देना से एक स्पेशल रिक्वेस्ट सुन रहे ना के मोर चिरैया तोर चिरैया, एक के संगे सूते और एक के संगे जागे। राजू सिंह गुलाम और साथियों के पास में।

राजू सिंह गुलाम और साथियों के पास में भी आप सुनते के मो चिरैया तो चिरैया स्पेशल रिक्वेस्ट वो भी देना देना से एक स्पेशल रिक्वेस्ट भी आप सुनते आज की बैठक गाना प्रोग्राम से आखिरी नंबर सुनते रहे।

बस समाप्त होने पर आया आज की बैठक गाना प्रोग्राम। यहाँ से आने वाले रविवार को शाम में सुनते रहना फिर से एक बार बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर रेडियो SBS। अभी सुनते रहना प्रोग्राम से कमर्शियल्स, न्यूज, फिर केस फार्मेसी और उसके बाद में आज ये आंशलिक के जरिए प्रोग्राम सुनते रहना। मैं था आप ही का खिदमुजर ग्लैंड। हमारे तरफ से आप सब सभी को एक शुभ शाम कहा जा रहा है। मिलेंगे फिर आने वाले रविवार को शाम में।

0: हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आर जे अंशुलि रामलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशुलि रामलाल, दी यू फहार्त वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। विल तू रिएक्शन कैन इट ऑलटाइम, सर्फ मार नार द वेबसाइट www.radiosbs.nl ऑफ बेल गरुस मेट द स्टूडियो नार 032 62 66 11। Voor alle andere info kunt u bellen met 032-65-65-60. En beginnen we meteen met het eerste liedje van vandaag en dat is...
1: Are, are, are, na, na, na, na, na, na, na.

हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा।

0: चांद भी देखा, फूल भी देखा, बादल बिजली तितली जुगनू, कोई नहीं है ऐसा, तेरा हुस्न है जैसा. हुसैन जगजीत सिंह एंड अलका याचनिक heeft u gehoord uit de film Terkieb. En uit de film Sare Sipne komt opnieuw gezongen door Alka Yachnik deze keer. Zara zara zi baate, teri mujhko yaad aati hai.
1: Haseen lamhe, shareer lamhe, sharmile lamhe, jhijakte lamhe, pighalte lamhe, dhadakte lamhe. मोहब्बत में गुजरे ये तमाम लम्हे दिल की पगडंडियों पर अपने पैरों के निशान छोड़ गए हैं. मौसम बदलते हैं, हवाएं चलती हैं, लेकिन ये निशान न मिटते हैं न हल्के होते हैं.

आते आते आ गए पास हम, जाते जाते ले गए तुम सनम, मेरी नींदे मेरे सारे सपने, ले चलो मुझको भी साथ अपने, तुम न मारो तो तुमको कसम, was uit de film Chori Chori en is gezongen door Elka Yachnik en Babu Supriyo. Gaan we dan verder met uit de film Chehre, Rang Darya.

जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। इस सॉन्ग अदोर अमित मिश्रा एंड अभिजीत एंक्वाम आर द फिल्म जवाने जाने मन एंड आर द फिल्म अभिमान कॉम्थ सॉन्ग अदोर लता मंगेशकर तेरी बिंदिया रे।